नानक गादी बड़ियाई, सगरे जग की बर गुरियाई, सो हम देन उठत इस समय जिसके अगे त्रिलोकी नमे, जिदे अगे सारा त्रिलोक नमस्कार करदा, असी ते ओ गद्दी इनू देन लगे सां। भाव कहण दा सा संगत गुरु हरगोबिंद साहब दी जपजी साहब दी सुनाउण बदले चित जोड़ के इतनी प्रसन्नता, पर की किया अब भी धन जन्म भव पयो, जन्म मरण दुख सब मिट गयो, कि अजे भी तेरा जन्म धन है, तेरा जन्म मरण सारा ए भी मिट जाएगा, करियो मनोरथ जो अब जैसे, सो लीजो नै बिलमो कैसे, जेड़ा मनोरथ बनाया हुण ए मनोरथ तेरा भी पूरा होएगा, कह कर सो घोड़ा मंगवायो, सुंदर जिस पर जीन सुहायो, आख सतनाम ओहो घोड़ा सुंदर जीन वाला महाराज जी ने मंगवाया। ए सूरज प्रकाश दी पंक्ति है, सवा लाख की कीमत जाही, होए प्रसन्न बख्शत है ताई, प्रसन्न होके ओ घोड़ा बख्शिया है, धन गुरु हरगोबिंद जी ने। कवि किवें लिख रहा है, आओ बड़े

नानक दे प्यारे अख सतनाम कहण तो भाव उन्हां नूं अपने जीवन विच एक वारी इहदी प्राप्ति हुई प्रतख अख सतनाम इशारा लियो पढ़ लिए दो मिनट।

ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, जिवें ओह बुला रहा दास बोल रहा है, किसे नूं प्रतख किधरे किधरे प्राप्ति होई है उहदा जिक्र सुन के रंग लाए। रंगियां दा जिक्र कुदरती सामने आ जे बोलिया जांदा उहदा भाव लैणा किते सतगुरु कृपा कर। इहो जिहा प्यार प्रेम सानूं ही होवे। उदास बेनती कर रहा सी, शब्द दर्शन, सुपन दर्शन, प्रतख दर्शन, चौथे ने चित्र दर्शन। अमरीका का शहर हो गुरु रामदास के घर की चित्र लगा हो, एक मिनट वेखी जाओ तो की याद आएगा, थोड़ी याद पहुंच जाएगी गुरु रामदास के घर। आखो सतनाम, चित्र च भी ताकत। ए भी ताकत, भावें किसी होर धर्म वांग चित्र के मुख से असी कोई लड्डू बर्फी ये किरिया नहीं करनी। केवल चित्र लगा होवे साईं भी याद दवांदा है। अजायब घर क्यों बने कि इन्हां चित्रां नूं वेख के सानू अपने पिता पुरखां दीआं कुरबानियां याद आउण ते होर रंग लगे। इन्हां च ताकत। बाबे टनल दे गुरुद्वारे जाओ ते कितने इतिहासक चित्र अंदर खो

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करने लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शुद्ध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण किया सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ।

हाल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए। इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए, शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन। ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच, मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोकां वास्ते जिवें कबीर जी दा वचन सी जिहे मरणे सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तां पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिहे मरणे सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा नहीं समझिया जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसिआं दे बदले मरना सच ते जीना झूठ ले के दिता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान कीता सी मरदानिआं कोई तां समझ वाला बैठा है इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकदे ने शक हो सकदे ने शंके रह सकदे ने गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच ये जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही ये सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओह झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तों बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा जो सच है जो वापरना है इस तों बंदा डरदा कहिंदा दी गल ना करो जे मरणे सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरणे ते जग डरे मेरा मन आनंद मरणे ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावें मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओह हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तां ओह मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओह मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी लेकिन एक मौत होर भी है ओह है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जांदी हौं दी मौत हो जांदी ते बंदा इस मौत तों भी डरदा जिस नूं इह मरना आ गया ना उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया जिहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया उह शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हां नूं चज नाल जीणा आ गया है सच्ची गल तां इह है कि चज नाल मरना भी उहनां नूं आया कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण ते चित करदा है हौं करके मरण नूं चित करदा है उंज भी जे मौत आवे जी आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जानिया मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां ने, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालण दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुख इहदे बारे बड़ा ही अवेसला है, उहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं।

जगी और न यही महत्व में अवतारी उजागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा जमी।

सुन बेद बिरंत बिचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

अपने आप साजियन आपे ही दम खलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब उमत

आनंद सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद